0: お前で
1: 文字文字文字
0: おでかおきやねちゃちゃちゃちゃちゃちゃ
2: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप इस टाइम तो ब्लास्टिंग मारे लू हो
1: तू चारी भी क्या लिखवा ले बुका
0: अरे रे ए ए
2: आ जिगर पलट प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप इस टाइम तो ब्लास्टिंग मारे लू